0: Leica Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163251100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा।
4: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
5: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: अभी कॉल कीजिए 01162021222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
5: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
6: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथस्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

कर कर वेखै सृजनहार। नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोलख होवें, लख होवें लखवीस, लख लख

ए लोक बड़े खतरनाक हन। कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखां राक्षस हन। मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हन। कौडा ता मनुखां नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मास कच्चा ही खा जांदे हन। एडे भयानक हन महाराज, फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे हो?

गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे ईश्वर कृपा करेगा, यही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता, अनेकां नूं तारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। यही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनू 36 प्रकार दे भोजन दिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नू देव लूत असे उस दे राक्षी फौजा सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। ते मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा, एडियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे, ये तो बड़े भयानक मनुख जापते, बड़े भयानक राक्षस हैं। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ विगाड़ नहीं सकदा। जिन्हां नू बाणी दा आसरा है उन्हां दा कोई कुछ विगाड़ नहीं सकदा। कितनियां हनेरियां आउन तूफान आउन, जिन्हां बूटियां नू जिन्हां ब्रिशां नू

0: दिया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुनि बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। चाहे तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Packed for the trip? Gifts? Passport?
2: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
2: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
5: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
6: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
5: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
7: जी टीवी एच डी पर देखिए तुम से तुम तक।
8: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
7: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
8: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
9: मैं ही राजीव भाटिया।
7: तुम से तुम तक रोज रात 8:30 जी टीवी एच डी पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest station wake-up call. This is Kajal on Breakfast. Leica Radio.
11: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: ¡Cashier!
1: Good morning. स्वागत है आपका. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट. यस, मनोरंजन कार्यक्रम में स्वागत है आपका. माय नेम इज रवि शर्मा. दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ. और बहन भाइयों, इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुआ चाहते हैं. बुधवार, वर्ष 2026 के मई महीने की 13 तारीख. और भाई, वक्त तो है ही हमारी आपकी मुलाकात का. सोचा था जमाना बदलेगा, सोचा था जमाना बदलेगा, मौसम ये सुहाना बदलेगा. बदलेगी हर एक शय दुनिया की, पर दिल ना दीवाना बदलेगा. जो रोज नया लगता था हमें, वो यार पुराना बदलेगा. न मरहम की सोचेगा कभी, न जख्म लगाना बदलेगा. रहता था जो दिल में इल्म न था, वो रोज ठिकाना बदलेगा. वो रोज ठिकाना बदलेगा. अब जाके ना लौटेंगे यारों, आना जाना बदलेगा. दुनिया बदले, मौसम बदले, कैलेंडर बदले, पर हम नहीं बदलेंगे.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Are you listening? Leica Radio is now available across Wolverhampton on DAB.
1: Leica Gold, golden geeton ka khazana. Aur Sharma ji, आज के प्रोग्राम में आप क्या करेंगे? भाई वही करेंगे जो हमेशा करते रहे हैं. क्या करते रहे हैं?

0: गड्डियों दी छलांगा मार दी। कोई गड़बड़ है भाई, भाई ये ट्रैक की जांच करवाओ भाई। गाड़ी को स्मूथ चलना चाहिए, गाड़ी को भाई बड़ा बिना हिचकोले खाए चलना चाहिए, वो छलांगा मार दी जा रही है। गाड़ी है या घोड़ी है? गड्डी जाओ दिए छलांगा मार दी, कुछ भी लिख देते हैं और भाई कुछ भी चल जाता है संगीत के साथ। तो साहब दो गीत बैक टू बैक हमने आपको सुनवाए और मुझे यकीन है हमारे श्रोताओं को जरूर भाई होंगे। मैं याद दिला दूं कि आज बुधवार है और आज बुधवार को रवि शर्मा को शरारत करने का पूरा अधिकार है। क्यों?
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
0: देखिए साहब, हंसना चाहिए और हंसाना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी काम के लिए मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडियो में पहुंच जाऊं। हालांकि आज वो पार्लियामेंट की ओपनिंग है ना, तो मुझे भाई प्रधानमंत्री का भी इनविटेशन था, कहता आओ मेरी हेल्प करो, लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कह दिया साहब मेरे पास वक्त नहीं है, कितना बिजी हूं मैं बता नहीं सकता। बोले क्या कर रहे हो? क्या कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं पर बिजी हैं। यकीन करो बहुत सारे लोग मेरी तरह है, बिना कुछ किए धरे बिजी हैं, और भाई बिजी रहना भी चाहिए। देखिए किसी ने पूछा था मुझसे, याद आया कि आप क्या करते हैं, मैंने कहा हम रेडियो प्रोग्राम करते हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं सुन लो भाई। अरे भाई रेडियो प्रोग्राम करते हैं आप अपने यहाँ क्या कहते हैं उनको, आरजे कहते हैं डीजे कहते हैं, वो कहते होंगे, मैं तो भाई अपने आप को रेडियो प्रेजेंटर कहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं हाँ वो ठीक है मान लिया, लेकिन काम क्या करते हैं। मुझे लगा रेडियो शो करना कोई काम नहीं है, वो कहते हैं कि रेडियो प्रोग्राम वही करता है जिसको कोई काम नहीं। भैया पिछले 50 साल से इसी का खा रहे हैं, इसी से कमा रहे हैं, इसी का गुणगान कर रहे हैं, इसके गीत गा रहे हैं। खैर तो भाई अपनी अपनी बात आप समझ गए ना, हंसाने के लिए बात बनाई है। आइए अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए दे रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK एक पाउंड के बदले भारतीय करेंसी में 129.15 रुपए दे रहे हैं, दैट्स मैक्सिमम। यस टुडे द रेट इज 129.15 इंडियन रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
2: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
3: ये है
4: Leica Radio.
5: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
6: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
5: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
6: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
5: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.

0: Kesha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu chhe ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
5: Jay's Entertainment line avi rahya chhe sakhna re jo husband ji
4: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk sakhna
6: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ
7: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
8: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
10: और भाई भाइयों गीत सुनवाने से पहले एक ब्लाइंड व्यक्ति की शायरी जो है वो कुलकुला रही है दिमाग में और यूं समझिए कि भाई मचल रहा है मन उसे आप तक पहुंचाने के लिए. अंधा व्यक्ति शायरी करता है, कविता लिखता है और क्या लिखता है, तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है. क्या बात है, कोई मिस कॉल कर रही है आपको साहब? हाँ, तुम्हारी भूल है कि वो मुझे मिस कॉल करती है. मेरी चाहत को वो लड़की सदा अनमोल करती है. मुझे एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती. मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है. मेरी बेटी मुझे हर रोज वीडियो कॉल करती है. मुझे एहसास अंधेपन का वो होने नहीं देती. क्या बात है साहब, ऐसे कवि को और ऐसी बेटी को और ऐसी कविता को सलाम करने को जी चाहता है.

ये तुम्बा खंबा बम्बा रंबा, ये वो ममता बनर्जी की भाषा नहीं है, ये कोई और भाषा है। रंबा हो खंबा हो, लेकिन मतलब इसका भी नमस्ते ही निकलेगा, यकीन कीजिए।

0: नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते का एक तो जो सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ वो तो ये है कि आपके भीतर बसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भाई करते ईश्वर को ही है, लेकिन व्यक्ति में, हर व्यक्ति में ईश्वर का निवास है ये मान के। लेकिन भाई ये नमस्ते के कई अर्थ हो गए हैं, जैसे भाई ये चीज ठीक नहीं, इसको नमस्ते करो, तो उसे दफा करो, उसको भी इसमें ले लेते हैं। ये चीज अच्छी है भाई, जरूर इसको नमस्ते को, यानी उसका स्वागत करो। हर तरह से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक नमस्ते वो भी है जो कई एमपीज और मिनिस्टर्स मिलके ना प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं, नमस्ते जी नमस्ते, बहुत हो गया। आज भाई वो पार्लियामेंट की स्टेट ओपनिंग है ना, महाराजा के भाषण से पहले, किंग स्पीच से पहले कहते हैं कुछ न कुछ शायद फैसला हो जाए, क्योंकि लगातार एक लहर सी चल रही है प्रधानमंत्री के खिलाफ। क्या होगा पीएम स्टामर साहब, क्या होगा, जो भी होगा खबरों में होगा, और क्या कुछ होगा इसके अलावा भी, भाई आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज के खास खास समाचार सुनिए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान के जो बिचौलिए के तौर पर काम है वो अच्छा है, क्योंकि अब इस बात को लेकर के भाई काफी आलोचना हो रही है कि पाकिस्तान की भूमिका ईमानदार रही है या क्या गड़बड़ है उसके पीछे, आगे बताते हैं। भारत में एक थोड़ी देर पहले अभी एक घटना घटी, से दुर्घटना कह सकते हैं, मणिपुर में आज सुबह घात लगाकर किए गए एक हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक आज सुबह करीब 10 बजे भारतीय समय के अनुसार इम्फाल तामेंग लॉन्ग राजमार्ग पर कोटलेन और कोटाजिम गांव के बीच ये अटैक हुआ, और जानकारी के मुताबिक सस्पेक्ट उग्रवादियों ने कथित तौर पर वहां से गुजर रहे वाहनों यानी गाड़ियों पर हमला किया, जिसमें 3 चर्च नेताओं की मौत हो गई है। छानबीन जारी है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर विजय ने विधानसभा में अपनी मेजोरिटी साबित कर दी है। तमिलनाडु में आज तमिलगा वेत्री कड़गम यानी TVK, ये पार्टी का नाम है, नई पार्टी है, नया नेता और साहब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और अपना बहुमत भी साबित कर दिया है यानी मेजोरिटी साबित कर दी है। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार के पक्ष में 140 MLAs ने यानी विधायकों ने वोट किया। 234 मेंबरों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 था, 144 ने उन्हें समर्थन दे करके उन्हें पक्का कर दिया। सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से MCX पर सोने का भाव 1.62 लाख पार कर गया है। भाई भारत में आपने सुना था कल की खबरों में कि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सोना खरीदना कम से कम 1 साल के लिए बंद कर दें। भारत सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है, अब 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है, ताकि लोग बाहर से सोना ना खरीद के लाएं, विदेशी मुद्रा जो है वो बचाने के लिए, और वो वर्तमान संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, फोर्स नहीं किया है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला इसलिए लिया है कि ताकि कीमती धातुओं की विदेशों से खरीद को कम किया जा सके और देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी के खजाने पर दबाव ना पड़े। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के भाई की मौत हो गई। और ये कौन से भाई हैं भाई? सगे भाई, मैं सगे ही कहेंगे आप इन्हें। असल में इनके पिताजी ने, जो मुलायम सिंह यादव थे, उन्होंने दो शादियां कर रखी थी। दूसरी शादी के बारे में ज्यादा चर्चा हमें सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन इनकी एक और पत्नी से उनका बेटा था, उसकी अचानक मौत पर समाजवादी की पार्टी के चीफ और फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने दुख जताया है। अखिलेश यादव ने एक्सपर्ट लिखा है कि प्रतीक यादव का निधन बहुत दुखद है, दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, विनम्र श्रद्धांजलि। भाई मुलायम सिंह यादव की एक और पत्नी भी थी साधना गुप्ता, उनसे ये उनका बेटा है प्रतीक। और उनकी पत्नी यानी प्रतीक यादव की जो पत्नी है अपर्णा यादव, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। किन देशों ने पाकिस्तान के बिचौलियेपन की कोशिशों को हिमायत दी और कौन उसकी आलोचना कर रहे हैं, शक कर रहे हैं? कतर और तुर्की ने पाकिस्तान की उन कोशिशों की हिमायत की है जो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए की जा रही हैं। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कतर और तुर्की मिलकर पाकिस्तान की कोशिशों को समर्थन देते हैं, जिसका मकसद सीज फायर तक के समझौते तक पहुंचना है। यह बयान पिछले मंगलवार को दोहा में हुई बैठक के बाद आया। बैठक में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान शामिल हुए थे। ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान बिचौलिया बना और लगातार कोशिश कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत भी हुई थी, लेकिन यह बातचीत अभी तक बेनतीजा साबित हुई है। भारत में लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कल मंगलवार को पीएम आवास पर हुई मीटिंग में सेंट्रल ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के नए डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर, चूज करने के प्रोसेस पर असहमति जताई है। मतलब वो उससे सहमत नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पत्र साझा किया है, जिसमें लिखा है कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है। ये संस्था भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसको राजनीतिक विरोधियों के लिए इस्तेमाल करना बहुत बुरी बात है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन के दौरे पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से विस्तार से बातचीत करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
3: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना, इस तरह से लड़कियों को आता है लड़कों को फसाना। नहीं, बताता हूँ, अनुभव की बताता हूँ, आप गुस्सा न करें। हुआ क्या कि हमारे एक दोस्त बहुत परेशान है, वो इतनी टेंशन में है कि पूछो मत। वो कार में जा रहे थे और ऐसे एक रास्ते में लड़की ने लिफ्ट मांगी। अब भाई पहली टेंशन तो उन्हें यही हुई कि लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। वो अपने आप को इस काबिल समझते नहीं थे कि भाई कोई लड़की कभी जिंदगी में उनसे लिफ्ट मांगेगी। अब उन्होंने भाई खुशी खुशी गाड़ी का दरवाजा खोला, उन्हें बिठा लिया और उसके बाद वो उसे लेके चले। थोड़ी दूरी चले थे कि लड़की सीट पर लुढ़क गई, जैसे बेहोश हो गई हो। जब डबल टेंशन, अब वो साहब सोचते अब क्या करूं। वो फिर सीधे उसे हॉस्पिटल लेके गए। अब हॉस्पिटल में जाके उन्होंने नर्सों को सौंप दिया, जी संभालिए ये बेहोश हो गई है, कुछ हो गया है। अब वो स्ट्रेचर पे लेटा के उन्हें ले गई और ये सोचते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, होश में आएंगी, ठीक होंगी तो फिर छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन तभी एक नर्स पीछे दौड़ती हुई आई, सुनिए सुनिए सुनिए, ये लीजिए पर्ची और ये दवाइयाँ लेकर आइए। और ज्यादा टेंशन, मैं क्यों दवाइयां लेके आऊं? अरे मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। चौथी टेंशन, मैडम नर्स जी सिस्टर जी, वो मेरी पत्नी नहीं है, उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। बकवास मत करो, हमने देखा आप खुद ही लेके आए उनको, यहाँ पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। अब ये दवाइयां लेके, नहीं दवाइयां नहीं, तुम पैसे दो दवाइयां हम लेके आएंगे, तुम तो भाग जाओगे दवाइयां लेने के बाद। बिठा लिया, चीखता रहा चिल्लाता रहा बंदा कि मैं इसका पति नहीं हूं, मैं इसके होने वाले बच्चे का बाप नहीं हूं। कैसे नहीं है? आजकल पता है ना, मेडिकल एजुकेशन बहुत एडवांस हो चुकी है, जांच होगी हम पता लगा लेंगे। अब साहब उन्हें जबरदस्ती ले गए, जांच पड़ताल की और जब वो बाहर उन्हें छोड़ने आए, कहने लगे ठीक है मान गए हम आपकी बात, आप होने वाले बच्चे के बाप नहीं है, मुबारक हो। उन्होंने सोचा भाई कहीं यहां तो यहां बच्चा होने वाला हो तो मुबारकबाद देते, यहां नहीं होना है या मतलब बाप नहीं बनने वाले इसलिए मुबारक हो। मैं अब जा सकता हूं? हाँ जा सकते हो, हमने अच्छी तरह जांच कर ली है, आप बच्चे के बाप हो ही नहीं सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पिता बन ही नहीं सकते, आप बाप बनने के लायक नहीं है, हमने जांच कर दिया है। और इस भाई को पसीना आ गया। अब भाई ये सोचा कि चलो निकले यहां से तो निकले। अब वो बाहर निकले तो सोचने लगे, सबसे बड़ी टेंशन कि ये डॉक्टर कहते हैं कि मैं पिता बन ही नहीं सकता, तो फिर घर में वो जो मेरे तीन बच्चे हैं वो किसके हैं?

0: तुम बेघर ही रहो, मुझे भी बेघर कर दो।
1: ये है Lyca Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और ये भी सुन लीजिए साहब, LemFi के रेट्स एक पाउंड के बदले टुडे एट दिस टाइम दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.28 रुपीस, पाकिस्तानी 376.34 रुपीस, श्रीलंकन 438.03, बांग्लादेशी टकाज 165.99 और अफगान अफगानी 86.44.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Lyca. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Lyca Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Lyca Radio.
0: Well, gold is sold at the rate of 111.9 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Lyca Radio.
1: India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: Cricket update. IPL चल रहा है, हलफूल रहा है और भाई आज के मैच का जिक्र करने से पहले कल के मैच की स्थिति बता दें आपको। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मैच खेला गया और क्या परफॉर्मेंस थी भाई। एक तो उनका होम ग्राउंड था, अहमदाबाद में खेला जा रहा था, 168 रन बनाए उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 82 रन पर ही सिमट, नहीं 82 में 86 रन पर सिमट गए, 82 रन से हार गए। तो भाई गुजरात टाइटंस जीत गए बाई 82 रन। और आज के मैच के बारे में बता दें, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच, नहीं ये तो कल होगा मुकाबला, आज का मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच होगा और ये 57वां मैच होगा 74 मैचेस में से। तो भाई स्कोर के आंकड़े हम आपको बताते रहेंगे, जुड़े रहिएगा Lyca Radio नेटवर्क के साथ।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited इज ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द FCA।
2: ये है Lyca Radio।
3: Lyca Radio।
4: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99,
4: हमजा समोसास 3 for 10,
5: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
4: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
5: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
4: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
5: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
4: Stocks last.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: ZTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Lyca Radio.
9: weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
10: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जेमिन फूड्स.
11: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट द एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट.
10: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जेमिन फूड्स.
12: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
13: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
14: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
15: खुद से भी ज्यादा.
13: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
15: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
13: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394.
1: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.

बैठिए, चाय पीजिए। चाय का वक्त है लेकिन आपकी गाड़ी का वक्त भी हो गया है। छोड़िए, चाय को मारो गोली, ट्रेन पकड़ो। लेकिन मेहमान कहता है कि मुझे तो सुबह वाली गाड़ी से जाना है। हाँ, सुबह हो चुकी है, निकलो।

स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और इस वक्त जबकि ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, मैं पेश करता हूं आज का विचार, थॉट फॉर द डे। और आज के विचार में हम शामिल कर रहे हैं अशोक चौहान का भेजा आलेख। अशोक चौहान MBE भाई ब्रिटिश मिलिट्री में सेवाएं दे चुके हैं और उन्हें गर्व है कि उन्होंने एक फौजी के रूप में, एक सैनिक के रूप में अपने देश, अपने वतन यानी ब्रिटेन को सेवाएं दी हैं। प्रस्तुत है उनका भेजा आलेख आज के विचार में, जिसे हम कहते हैं चिंतन।

फौज की भर्ती चल रही थी, दफ्तर में नौजवानों की लाइन लगी थी, सब सैनिक बनना चाहते थे, फौज में भर्ती होना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे, देश के काम आना चाहते थे। तभी एक लड़का आगे आया, उसकी जांच हुई, परीक्षा हुई और उसके बाद उसे जब कहा गया कि सॉरी आपको हम फौज में नहीं ले सकते, लड़का निराश हो गया, वेरी डिसअपॉइंटेड। कहने लगा मेरे दादा फौज में थे, मेरे नाना फौज में थे और मेरी मां की इच्छा थी कि मैं भी देश की सेवा करूं। भर्ती करने वालों ने कहा कि भाई आप डॉक्टरी में भी फेल हो गए हैं, आपकी हाइट भी पूरी नहीं है, वजन भी कम है, तो क्या मैं अपने वतन के किसी काम नहीं आ सकता? अरे बेटा निराश मत हो, फौजी अफसर ने कहा, आप फौजी हैं, फौजी बन सकते हैं, देश का हर नागरिक फौजी बन सकता है, और फिर चाहे आप अपने देश में हो या विदेश में, अपने देश को सेवाएं दे सकते हैं कहीं भी बैठे। कैसे? बच्चे ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो बिना वर्दी पहने भी आप फौजी कैसे बन सकते हैं, देश पर जब कभी कोई संकट आए तनकर खड़े होना, बन ठनकर खड़े होना, सेवाएं देना, और अपने देश में रहते हुए देश के कानून का पालन अगर आप सही तरह से करते हैं वो भी देश सेवा है, आप स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं वो भी देश सेवा है, आप वॉलंटरी वर्क करते हैं। बच्चा सुनता गया और फौजी समझाता गया, और बहनों भाइयों मुझे ख्याल आया, भारत के प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की है कि वो कुछ समय के लिए सोना ना खरीदें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करें क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, जंग जब तक चल रही है तब तक वही ये समस्या बढ़ रही है। सोना ना खरीदें क्यों जी? बोले सोना खरीदेंगे बाहर से, सोना खरीदना होता है तो फिर जो फॉरेन करेंसी का भंडार है देश के पास उसके लिए संकट हो सकता है। सोना

के पास है, फिर जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, इनके पास भी, किसी के पास 2000 टन, किसी के पास 3000 टन, अमेरिका के पास 8000 टन सोना है, भारत के पास भी लगभग 1000 टन सोना है। लेकिन संकट के समय सोना ही एक ऐसी मुद्रा है, एक ऐसी करेंसी है जो किसी भी देश में चलती है। पाकिस्तान के पास भी अपने सोने का भंडार है, लेकिन उसकी जो कितना है उनके पास 60 या 65 टन के करीब। ऐसे समय में जब कोई संकट आता है, विश्व स्तर का हो या अपने देश के स्तर का, लोगों से कहा जाता है मदद कीजिए अपने देश की सेवा के लिए। तो भाई आजादी के समय जानते हैं कि कितने लोगों ने, बहन बेटियों ने, बहुओं ने अपने आभूषण देश को दिए थे। जब जब देश किसी लड़ाई में, मतलब विश्व किसी संघर्ष में अगर फंसा, तो उसे निकालने के लिए जो लोगों ने मदद की वो सैनिक बन गए। भारत ने जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया तो विदेशों से बहुत सारी सैंक्शन लग गई। भारत सरकार ने कहा कि विदेशों में बसे अगर भारतीय, यानी प्रवासी भारतीय मदद करें तो उनका कोई विदेशी मुद्रा भेजें, तो साहब लोगों ने अपने अकाउंट्स जो है वो खोल दिए और भारत इतना पैसा भेजा कि भारत पर वो सैंक्शंस कुछ भी असर नहीं दिखा सकी। और थोड़े समय बाद ही भारत ने सभी लोगों को उनका पैसा ब्याज समेत लौटा दिया। मुझे याद है वो समय भी। अब ये बच्चा कहता है कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं। कहते हैं कि फौजी अपने देश के प्रति समर्पित है, तुम और बच्चों के लिए प्रेरणा बनो, सहायक बनो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उसमें नायक बनो, हीरो बनो। अब वो बच्चा, गाने का उसे शौक था और वो देशभक्ति के गीत गा गा करके अपने देशवासियों का और अपने देश के जवानों का हौसला बढ़ाने लगा। वो फौजियों के लिए गीत गाने लगा।

किसी भी रूप में आप अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और बहन भाइयों, किसी भी रूप में आप अपने आप को देश के समर्पित कर सकते हैं। जब आप अपने देश की बनी चीजें खरीदते हैं ना, वो भी देश सेवा है। जब आप अपने देशवासियों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, जब आप अपने देश में बने कानूनों का पालन करते हैं, तो देश सेवा ही करते हैं। भाई, मैं आज इस संदर्भ में इस कहानी के साथ जोड़कर जो गीत प्रस्तुत करना चाहता था, अचानक स्टूडियो में कुछ गड़बड़ हुई और मेरे एक सहयोगी, मेरे कुलीग जो हैं वो आए, उन्होंने वो प्रॉब्लम ठीक भी करने की कोशिश की, मगर अभी तक हुई नहीं है। ट्राई करें, देखें, शायद गीत चल जाए। नहीं चल रहा है। चलेगा, चल गया। प्रेरणा, इंस्पायरेशन, दूसरों को देशभक्ति के लिए तैयार करना, उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाना भी देश सेवा है। बिना वर्दी के सैनिक बनिए, अपने वतन के प्रति वफादार रहिए। अशोक जी, थैंक यू फॉर दिस चिंतन।

0: देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। आप काम आ सकते हैं, देश में हो या विदेश में हो, आप शहर में हो, गांव में हो, नजदीक हो, दूर हो, अगर आप अपने वतन से प्यार करते हैं तो भाई आप त्याग कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं उस स्थिति में क्या देश को फायदा पहुंचे। मुझे याद है भाई, एक बार जब भारत की फौजें सरहद पर लड़ रही थी तो रेलगाड़ियां गुजरती थी हमारे शहर के स्टेशन से, और हम छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों के बच्चे वहां पर जाते तो महिलाएं अपने घरों से भोजन बना करके, अच्छे अच्छे पदार्थ बना करके, और गर्मी का मौसम था तो ठंडे पानी की वो बॉटल्स या जूस या वो लेकर के हम स्टेशन पर खड़े रहते। सारा शहर जो है वो तैयार था, लेकिन हम छोटे बच्चे भाग भाग के गुजरती ट्रेन में फौजियों को पकड़ाते थे, गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे लोगों के दिए हुए। हमारे पास अपना कुछ नहीं होता था, और उन दिनों में रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदना पड़ता था, बस वॉलंटियर्स की तरह से पूरा देश जैसे बॉर्डर पर लड़ रहा था। लड़ तो फौजी रहे थे लेकिन उनके पीछे खड़ा था पूरा देश। ऐसा होना चाहिए, ये कह रहे हैं अशोक चौहान OBE। आज के चिंतन में उनका भेजा आलेख हमने शामिल किया। और बहनों भाइयों, आज का चिंतन सुनकर के हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। पम्मी भाई, आप तो हमेशा सुनते हैं और तारीफ करते हैं। जैस्मीन, थैंक यू वेरी मच। फतेह पटेल, अनीता जी, रानी सलमवाली, अर्जन सत्यनारायण सैनी भारत से कह रहे हैं मुझे आज का चिंतन बहुत अच्छा लगा है। निर्मला जी, अरुणा भूपेंद्र पटेल, रागिनी महेंद्र हैरोमे, महेंद्र पटेल क्रॉयडन में, जगदीश जी बुशी में, अरविंदर जी और राजेंद्र राज, हंसा वोरा, रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सुनीता शर्मा पीछे नहीं, हमेशा सुनती हैं और रिस्पोंड करती हैं। नैना शाह, थैंक यू नैना जी, वत्सला याद दिला रही हैं, आज एकादशी है। यस, नारायण वरदाय सुरोत्तमाय, देवताओं में उत्तम नारायण अखिलेंद्र संस्थाय। भाई आप याद दिलाती हैं कि आज आप अपरा एकादशी है, बता दूं तो। वत्सला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश नॉर्थवेस्ट में, अजाज चैशम में, अजाज भाई थैंक यू वेरी मच। और भारत से आप भी हैं शायद, कीर्ति हैं, नाम नहीं लिखा। और हितेश पटेल, आप भी गुजरात से जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। मुकेश, सो नाइस ऑफ यू। हिना, भरत गंगाराम, आनंद तोमर जी और सहर, हिमांशु पटेल, हिमांशु भाई आप और रीवा, ये रीवा ठीक लिखा है, ऐसा तो नहीं कि रवि का रीवा बना दिया। थैंक यू वेरी मच रीवा जी। और आप कौन है भाई, आपका विदेश से आया संदेश सर आंखों पर, नाम नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। और मीनल त्रिवेदी, थैंक यू वेरी मच। करसन पिंडोरिया, थैंक यू भाई। चिंतन के प्रेमियों का धन्यवाद दोहराते हुए और खास धन्यवाद अशोक चौहान तक पहुंचाते हुए आज का चिंतन समेटते हैं। चिंतन समाप्त होता है। चिंतन, चिंतन। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज की रेट्स बता दूं भाई, आज एक पाउंड के बदले इस समय दे आर गिविंग 129.15 भारतीय रुपीस, भारतीय रुपए एक पाउंड के बदले। भाई आप भेजना चाहते हैं तो यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, यू कैन सेंड ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप यू कैन सेंड द मनी टू योर family members, friends. State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Lister, itna sasta deal dekha hai kabhi? Nahi, to chalo Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS sirf $24.99. Hamza Samosas 3 for 10. Top Star Fried Onions only 99p. Suhana
1: मसाला मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
2: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
1: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
2: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN,
1: व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
3: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
4: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
3: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
4: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
3: Tickets available now at venue box office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
5: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
6: No more worries for me or you.
7: Southall Travel, at all protected.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
10: Mantra Holidays.
11: What's your travel mantra?
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: ਸਾਡੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਈ 769 ਤੇ ਵਰਜਿਨ ਮੀਡੀਆ 811 ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੀ.
14: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
15: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. On this week's Leica Extra podcast, Weddings and Beyond with Donnie Brasco.
16: It was these two creators and they had a wedding and they only had about 20 people and they were able to do individual introductions of all their guests to introduce them to other guests and how much they meant to them in their life. And I just thought that was so nice. I mean, if I did that for 300 people, they'd be there for a week.
15: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms.
17: Leica Radio.
15: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world.
18: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. From Italy to Paris, Japan to USA, Star Tours takes you where you want to go. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.
19: Dard rehta hai. Dil mein dard rehta hai.
20: Achha?
19: Mujhe bhook nahi lagti. Mujhe pyaas nahi lagti.

0: इन्हें दर्द रहता है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं रक्षा करें तेरी सियाराम, मतलब अपने बस की बात नहीं है भाई। कुछ डॉक्टर्स होते हैं पहले ही बता देते हैं कि देखो भाई वैसे अपनी फीस देनी है दी जाओ, बाकी अपने बस का धंधा नहीं है। मेरे एक दोस्त वो खुद डॉक्टर थे, वो एक वहां पर क्लिनिक पर आए और कहने लगे मुझे इलाज करवाना है, दर्द रहता है, बड़ा दर्द रहता है। तो उन्होंने कहा साहब आप तो खुद डॉक्टर हैं तो आप अपना इलाज नहीं कर सकते? कहने लगे कर तो सकता हूं लेकिन मेरी फीस बहुत ज्यादा है। बाय द वे डायग्नोस किया आपको, हुआ क्या है?
1: This song is brought to you by Kumar Shanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.
0: एक बहुत ही बुजुर्ग और कमजोर से आदमी एक दिन मुट्ठी भर के टेबलेट्स गोलियां दवाइयां लेकर के मेरे पास आए और कहने लगे ये बताना किस चीज की क्या क्या कर सकती है ये। मैंने कहा फांकी मार लो, तुम्हें तो सारी ही बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ ठीक जरूर हो जाएगा।

0: इनके सच्चे।
1: और बच्चों की बात भाई, अगर कोई सच्चा है तो वो है नारी। नहीं, डरता नहीं कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ। देखिए, अभी अभी मुझे वत्सला जी ने बताया, रवि जी आप सोने की बात कर रहे थे, गोल्ड की, और आप जो कह रहे हैं कि वो 1000 के करीब यानी करीब 880 टन सोना भारत के पास है, वो भारत सरकार के पास है, वो बैंक में रखा हुआ भारत सरकार ने अपने उसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन अगर घरों में देखें और भारतीय नारी के पास देखें तो वत्सला कहती है कि, और मैंने भी कहीं पढ़ा है कि दुनिया में जितना सोना है उसका 11% उसका 11% जो है वो भारतीय नारी के पास है, औरतों के पास है। और साउथ में तो हमने कैसे सोने से लदी देखी है महिलाएं। भाई सोना घरों में है, श्रृंगार के लिए, शादी ब्याह के लिए, लेने देने के लिए, भाई उत्सवों पर पहनने के लिए, वो नहीं काउंट हुआ है, ये तो वो है जो सरकारों के पास है। तो भाई गोल्ड खरीदना बंद करें, घर में जो है उसी को निकाल करके, ताकि गोल्ड स्मिथ का भी काम चलता रहे, उन्हें रिपेयर कराते रहे, उनकी शेप बदलवाते रहे। पर एक साल के लिए मोदी जी कहते हैं कि खरीदना बंद करो। मैंने तो प्रॉमिस किया मोदी जी नहीं खरीदूंगा।
2: Brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: और भाई लाइका एक्स्ट्रा पर जो हमारा नया एपिसोड है पॉडकास्ट का, वो एपिसोड 15 है, वेडिंग्स एंड बियॉन्ड, बहुत दिलचस्प है, होस्टेड बाय डोनी ब्रेस्को। और भाई डोनी ने जो सवाल किए और जो मुद्दे उठाए हैं उसमें ना, आप देखेंगे तो जरूर आपको भाएंगे। आर वेडिंग्स नाउ जस्ट ए बिग इंस्टाग्राम शो? इज द वेडिंग कल्चर बिकमिंग टू मैटेरियलिस्टिक? भाई बहुत सारी बातें हैं, कुछ तो बातें ऐसी जुड़ गई हैं जिनका शादी से इतना लेना देना नहीं था, लेकिन भाई वो एक शो बिजनेस सा बन के रह गई। बहुत सारी बातें इंक्लूडिंग, और कुछ बातें ऐसी भी हैं भाई जो शादी में बहुत जरूरी और बड़ी गंभीरता से निभाई जाती हैं, तो देखना मत भूलिएगा। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
2: लाइका एक्स्ट्रा, get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app, or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
5: We hate
6: Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com.
12: T's and C's apply.
13: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
14: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
13: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
14: Also explore 2026 cruises
13: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
15: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner, Leica Radio.
13: Leicester, the biggest celebration of the year, is
11: is here.
2: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
11: Kavya Silks,
2: Rafiq Catering,
11: and Jungle Club,
2: Glozo,
11: Mars, Dreams,
2: and Neslo Estate Agents.
11: Join the fun with games, dancing, and live anchoring, and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee, or £200 for 15 snacks of sugar.
2: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
16: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
6: Pooja Sweets and Savories.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to likearadio.com and selecting Midlands or the mobile app. Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Gold is the UK's first Asian retro music station. Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app.
17: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
18: देने वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता अरे नंग धड़ंग मलंग

ना देखे वो गोरा काला ना देसी परदेसी। अरे जब चाहे सोने से भर दे फटे टाट की खेसी, जिस पर उसको प्यारा जाता उसको जेबे झाड़ के देता, देने वाला हा हा हा।

0: पूरा पॉकेट झाड़ के देता, रंग धड़ंग ऐसे लोगों को दूरबीन से ताड़ के देता, ढूंढ के देता है। और कभी कभी भी लगता है कि ऊपर वाला ठीक नहीं कर रहा है, ये इंसाफ नहीं कर रहा है। क्यों साहब कैसे? बोले कि वो एक बार देखा बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ एक बड़ा ही क्या कहे साहब, देख के डर लगे जिसको, उसको देख करके ना लोग रोकते थे, पूछते थे मैडम आपने अपने हस्बैंड के एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखाई कि नहीं। तो भाई वो कहते हैं कि रिपोर्ट कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है तो कहां से लिखाएं। कहते नहीं लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi Mobile App. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए साहब उनके भी रेट्स बता देते हैं। अगर आप पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो एक पाउंड के बदले टुडे दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 129.3 रुपीस, पाकिस्तानी 376.47 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 437.91, बांग्लादेशी टके 166.04 एंड अफगान अफगानी 86.47।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold is sold at the rate of 111.78 pounds per gram.
1: Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278. Leica Radio. India cricket score updates brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
0: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले चल रहे हैं भाई। कल का मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया और ये गुजरात टाइटंस ने जीता 82 रन से। अब T20 मुकाबले में ये बहुत बड़ा स्कोर है जिससे जीत उन्होंने दर्ज की और ये टारगेट भाई उन्होंने हासिल किया पहले बैटिंग करके। दूसरी बार उन्हें मौका दिया तो 14.5 ओवर में समेट दी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। और कल जो मैच होने वाला है वो पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। आज की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स भिड़ रहे हैं। दोपहर बाद 3 बजे मैच शुरू होगा। स्कोर के आंकड़े उपलब्ध रहेंगे हमारे पास, मतलब आपके रेडियो के पास। लाइका रेडियो नेटवर्क सुनते रहिएगा।
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस। डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे। Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. Lyca Radio.
3: Asiana in association with ZTV and Lyca Radio brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the New Bingley Hall in Birmingham,
4: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
3: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
4: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
3: For sponsorship and details, call 07803-633-926.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
2: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
3: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
2: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन्स पोटैटो चिप्स.
3: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy! Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
5: Spring hits on Leica Radio Network.
6: Manoranjan with Ravi Sharma.
7: और भाई मनोरंजन में आज शामिल हैं ठहाके.
8: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार.
7: और हंसाने के लिए भाई हमें मैसेज भेज रहे हैं, मटेरियल भेज रहे हैं हमारे पुराने दोस्त, हमारे जो हैं हमारे साथी जो हमें हमेशा मदद करते हैं कार्यक्रमों में, उनका नाम बाद में बताएंगे, पहले उनका ये पैगाम बता दें. लिखा है कि आज एक पुराने दोस्त को फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहा था. कई बार ट्राई किया उसने, फोन नहीं उठाया. फिर मैंने उसको टेक्स्ट भेजा और लिखा कि भाई पूजा तेरा नंबर मांग रही है, दूं कि ना दूं. बस ये लिखना था कि उसका 30 बार फोन आ चुका है, अब मैं नहीं उठा रहा हूं, वो फोन कर रहा है. और ये देखिए साहब, पत्नी ने पति से कहा,
9: ए जी मेरे पास दो खबरें हैं, दो बातें हैं, एक अच्छी एक बुरी, कौन सी पहले सुनाऊं?
7: कोई भी सुना दे. अब पत्नी ने सोचा कि पहले इनके लिए बुरी खबर सुना दूं कि
9: देखो पहले ये सुनो, मुझे मेरे मम्मी डैडी ने एक महीने के लिए मायके में बुलाया है तो मैं जा रही हूं.
7: हाँ ठीक है ठीक है, अब बुरी खबर भी सुना दो.
9: मतलब
7: समझ गए हैं लोग, इसीलिए हंस रहे. ये अच्छी खबर थी. अरे ये अच्छी बुरी खबर पे याद आया, हॉस्पिटल में एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के साथ बेड साथ साथ थे उनके, तो एक डॉक्टर जब चेकअप के लिए आया तो डॉक्टर कहने लगा, मिस्टर पेशेंट तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर. तो बोला, सर पहले बुरी खबर सुना दो. बुरी खबर ये है भाई कि तुम्हारी दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी, एक्सीडेंट जो है वो गंभीर था, जहर फैल गया है तो दोनों टांगें काटनी पड़ेंगी. जी अब अच्छी खबर क्या है वो भी बता दो. अच्छी खबर ये है कि तुम्हारे ये जो साथ वाले बेड पर पेशेंट है ना, ये तुम्हारे दोनों जूते खरीदने के लिए तैयार है. वो जूते खरीदने को तैयार है, इधर ये मायके जाने को तैयार है. अबे मना ले रोक ले, वो कहता है कैसे रोक ले भाई, एक आदमी के मुंह पे कालख लगी देखी, मुंह काला करके कहां से आ रहे हो? कहता नहीं नहीं नहीं, हुआ ये कि मैं पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गया था, वो अपने मायके गई है एक महीने के लिए, और जब गाड़ी चलने से पहले जब वो डब्बे में बैठ गई तो मैंने मारे खुशी के रेल का इंजन चूम लिया. अबे दिखावे के लिए तो रोकना था ना, अंदर से तो खुश थे.

0: पतियों को भाई बहाना मिल गया मोदी के उस अपील वाले बयान को लेकर के। पत्नी से कहते हैं, देखो मोदी जी ने कहा है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, इसलिए तुम्हारी वो छोटी बहन की शादी के लिए तुम जो हार खरीदना चाहती थी ना वो कैंसिल, तुम्हारे लिए भी ज्वेलरी नहीं खरीदूंगा। भाई प्रधानमंत्री की बात है कैसे टाले, और फिर देश हित में फैसला है। कहने लगी,
1: मोदी जी ने सोना ना खरीदने के लिए कहा है, डायमंड के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

0: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: मैडम, ये आपने क्या किया? ये अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी की आपने? आप इतनी खूबसूरत हैं, हसीन हैं, जवान हैं, फिर इस बूढ़े से शादी करके?
2: दो कारण।
1: क्या कारण है?
2: एक तो इनकी इनकम
1: और
2: दूसरा इनके दिन कम।

0: प्यार में सारा जीवन गुजार दो, दिन रात सुबह शाम प्यार में गुजार दो। धंधे पे नहीं जाना, कुछ काम करना कि नहीं करना, एकदम सोशल सिक्योरिटी है ना, चिंता मत करो भाई। दो गीत हमने आपको सुनवाए और अभी अभी जो गीत आप सुन रहे थे, एक तो कम जिंदगानी ऊपर से ये जवानी, तो साहब प्यार दो प्यार लो इस समय में, थोड़े से समय में। धर्म अधिकारी, दैट वाज द नेम ऑफ द फिल्म, और उससे पहले जो गीत आपने सुना था दैट वाज टेकन फ्रॉम द कशिश फिल्म। और अब फिल्म नहीं है, अब पैसों की बात करते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK, SBI UK giving 129.15 इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। भाई अगर आप लोगों को पैसे भेजना चाहते हैं तो रेट अच्छा है और सही मौका है। वाई यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाई यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 24.99।
3: हमजा समोसास 3 for 10।
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
3: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
3: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
3: Stocks last.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak.
8: Jay's Entertainment laine avi rahya che sakhna re jo husband ji
7: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasyano full dose. 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07 860-280-655, Mumbai Sandwich Station 07834832249 or eventbrite.co.uk.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
11: Nun Eaton, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
12: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
11: Mantra Holidays.
13: What's your travel mantra?
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Did you know the at Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Artist of the Week, भाई सप्ताह के कलाकार हैं पद्मश्री महेंद्र कपूर साहब. महेंद्र कपूर पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ और साहब उसके बाद बचपन से ही इनका गायन में जो है वो था, रुझान था, इनकी दिलचस्पी थी और 16 बरस की उम्र में तो प्रोफेशनली गाने लग गए थे. ये बहुत सारे अवार्ड्स इनके नाम हैं, पद्मश्री महेंद्र कपूर. भक्ति के गीत और देशभक्ति के गीत वही इनके बड़े मशहूर हुए हैं और जैसे कि फिल्में उपकार, शहीद, पूर्व और पश्चिम, मनोज कुमार साहब के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया और रवि, संगीतकार रवि की बराई धुनों पर इनकी आवाज़ खूब चमकी. आज बुधवार है और हमें किसी चटपटे से गीत का इंतज़ार है महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में. तो ये हमें लेकर के चल रहे हैं क्लासरूम में. ये प्राइमरी क्लास की टीचर बड़ी खूबसूरत हैं, हसीन हैं और हमें इंग्लिश पोएट्री सीखने की जरूरत है.

0: Feel Good Track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: भाभी जी, सारी महिलाएं अपने अपने पतियों की बुराई कर रही है, आपको ये चुगली करने की आदत नहीं है क्या?
3: मैंने कभी कर दी? पावे मेरा हसबेंड की नवी पैड़ाया, ना अकल ना शकल, पर मैं कभी अपने शोर की बुराई नहीं कर दी। भाई ठीक है, जरा मिल गया, हुण की करिए? ना अकल है ना शकल है, बुढ़ऊ, ना काम दा ना काज दा, दुश्मन ना आज दा।
2: कितनी अच्छी है भाभी जी, आप कभी अपने पति की बुराई नहीं करती है।

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: परियों के देश मुझे बुड्ढा लेके आ गया और मैंने जो उठाया घूंघट तो बुड्ढा गुस्सा खा गया. खाना ही था भाई, तुमने वो घूंघट क्यों उठाया? ये घूंघट उठाने का काम तो बुड्ढे का था. लेकिन कोई कदर नहीं है साहब, आपको बताऊं ना. अब अमेरिका में सुना है एक बूढ़े को उसकी बीवी ने ना दूसरी मंजिल से कूड़ेदान में फेंक दिया नीचे खिड़की से. खिड़की के रास्ते नीचे सड़क पर रखे कूड़ेदान में फेंक दिया सीधा विंडो से. कितनी क्या कहें भाई, बेपरवाह ये औरतें वेस्टेज करती है. कम से कम भी 4 साल और चल सकता था वो बुड्ढा.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: मैं जब भी लंदन आता हूँ रवि शर्मा जी के प्रोग्राम जरूर सुनता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ। वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करते, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, उनकी स्माइल भी जेन्युइन है।
1: थैंक यू।
0: जय माता दी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, मेरे भाई रवि शर्मा जी को और मेरे जितने भाई बहन मेरे दोस्त यार लंदन गए हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। जय माता दी।
1: गोविंदा जैसा चाहिए, कितना अच्छा और सच्चा इंसान है, कितनी अच्छी सच्ची बातें कह के गया।

0: चाहिए।
1: पैसा तो परेशानियों का भंडारा है, पिटारा है, पैसा तो मुसीबत है। और बहन भाइयों, मैं कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि आप चाहे तो अपनी ये मुसीबत मेरे गले डाल सकते हैं, मैं लेने को तैयार हूँ।
2: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Leica Radio.
3: Leicester, it's time to celebrate.
4: Rouge Millers brings you the ultimate 50 fest.
3: 50 days of giveaways worth a huge £50,000. We're talking gold coins,
4: LED TVs, designer saris, and over 50 luxury hampers up for grabs.
3: Shop and you're automatically entered into our lucky draw or discover hidden vouchers as you go.
4: Plus, instant rewards on fresh fruit and veg. Spend £5 and get a free hand wash.
3: £10 for a food chopper. £25 for a teapan or kadhai pan.
4: Rouge Millers, Melton Road, Leicester. 50 fest. Every shopper's a winner.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
8: Atif Aslam live in the UK.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS.
7: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: Are we there yet?
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
10: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
13: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
14: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
13: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Listen back to your favorite shows by logging on to LeicaRadio.com and selecting Midlands or the mobile app. This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
15: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
1: ऑर्डर ऑर्डर, इतनी तेज गाड़ी चला के कहाँ भाग रहे थे? ओवर स्पीड मिलॉर्ड, ओवर स्पीड में चला ही नहीं सकता मैं, तो कैसे चला सकता हूँ तेज गाड़ी, मैं अपनी ससुराल जा रहा था भाई। पुरुषों को ससुराल की ओर जाते हुए पता नहीं क्यों ब्रेक लगते हैं, जबकि महिलाएं जब अपनी ससुराल जाती हैं तो साहब हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, गाती हैं और गुनगुनाती हैं। क्या गाती हैं? ए भाई रुक जा, क्या गाती हैं? कहाँ है महिलाओं का वो गीत? यहाँ है महिलाओं का वो गीत। वैसे सखी सहेलियां, उसका क्या कहते हैं हौसला डुबोने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी जाना है तो जाना है, ससुराल जाना है।

मर्दानगी असली दिखाती है दुल्हन जब ससुराल जाती है। अरे दूल्हा तो बारात साथ लेके आता है, कितने लोगों के साथ आता है, और हाथ में तलवार लाता है, और ये शेरनी अकेली जाती, बिल्कुल अकेली।

0: वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और लीजिए साहब, मैं LemFi की रेट्स बताता हूँ आपको. अगर अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हैं तो इनकी सेवाओं का फायदा उठाइए. For £1 today at this time they are giving भारतीय करेंसी में 129.18 रुपीस, पाकिस्तानी 376.26, श्रीलंकन 438.64, बांग्लादेशी टके 165.79 एंड अफगानी 86.42.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
2: और गोल्ड रेट सुन लीजिए भाई. सोने का भाव इस समय 111.8 पाउंड्स में आप खरीद सकते हैं एक ग्राम सोना. दैट्स
1: रॉम ज्वेलर्स स्पेशलाइजिंग इन डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, 22 कैरेट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियन बार्स. विजिट रॉम ज्वेलर्स ऑन 116 बेलग्रेव रोड, लेस्टर, और कॉल 0116 266 4278. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026. India cricket score updates, brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly, proud to be the official partner of England cricket.
2: और साहब, टाटा आईपीएल मुकाबलों का आज जो मैच खेला जा रहा है, दैट विल बी आरसीबी वर्सेस केकेआर. भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स. अब इन दोनों के बीच मुकाबला दोपहर बाद 3 बजे शुरू होगा और मैच के स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे. टोटल 74 मैचेस खेले जाने हैं. आप देखते हैं कि कौन कौन सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और फिर फाइनल मुकाबला किसके बीच होता है. भाई ये तो आगे चल के पता चलेगा. फिलहाल आपको बता दें कि कल जो मैच खेला गया था गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच, वो गुजरात टाइटंस ने 82 रन से जीता. कांग्रेचुलेशंस.
1: इंडिया क्रिकेट स्कोर अपडेट्स वर ब्रॉट टू यू बाय Remitly, वेयर मोर ऑफ योर मनी मेक्स इट होम विद कॉम्पिटिटिव रेट्स एंड लो फीस. डाउनलोड द Remitly ऐप टुडे. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: This is Leica Radio Network. और मैं हूं मैं कौन? अरे भूल ही गया, हमारा नाम सूचिए.
3: कौन छू मन खबर.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल
3: 0208574 8410.
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
4: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
0: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
4: Or sales at leicamedia.co.uk.
5: Lester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
6: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580-1801. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
7: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: और मनोरंजन को समेटने का समय हो गया है. फूल खिले हैं डाली डाली, हरी मिर्च भैया की साली, हुस्न की क्या तारीफ करूं जी, चिट्टा चाटा सूरत काली. सुन तो नहीं रही होगी. सारे जलेबी जैसे गुण हैं, सीधी सादी भोली भाली, बिल्कुल जलेबी जैसी सीधी. और साहब चर गई मेरे दिल का गार्डन. कितनी थी गार्डन में हरियाली, सब चर गई. निकल गया मुंह से भाई, जो कह दिया कह दिया. आप देखिए मुझे खबर थोड़ा है, मैंने खबर न थी हूं कौन छू, हाँ मारी मम्मी कौन छे सभी भूली गया, पर बद्दा समाज ने खबर छे, ए लेडीज ने खबर छे हूं कौन छू, कौन छू हूं. जावानु समय थी गया छे. रवि शर्मा, पोटली बांधो, पतली गली से निकल लो.

0: गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। भाई बाली भाई स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं तो शर्मा जी बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं। भाई मारा नाम सूचे, मेरे खबर ना थी,
1: तमने खबर
0: छे?
2: रविंद्र शर्मा छे मारू नाम,
0: समथिंग।
1: जून को मिलेंगे,
0: फर्स्ट जून को।
1: हाँ,
0: कहा जा रहे भाई?
1: छुट्टी पे जा रहा
0: हूँ। गलत बात,
1: बदला आपसे बदला ले रहा हूँ।
0: विल मिस बाली भाई, आई विल

Wow, wow, wow, that was Kishore Kumar, and calling all Kishore Kumar fans, a special musical night featuring Ketan, Indrani, Sanjay and the 515 band. It takes place on Friday, 19th of June at the Prince Regent Hotel, Chigwell, Essex. Exclusive radio partner, Leica Gold Radio. Aaj kya kya hone wala hai? Are bahut kuch hone wala hai. Hamare paas ek guest aane wale hai. And he is... क्या बोलते हैं, 8 साल की उम्र से इन्होंने सिंगिंग शुरू किया और फिर बस तमन्ना थी कि बस फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, मैंने सिंगर बनना है और बड़ा नाम कमाना है. वो उन्होंने शुरुआत की और आज तक ही इज सो सक्सेसफुल. ऑनेस्टली, वीर जारा जैसी फिल्म में किसी को चांस मिले गाने का तो और क्या चाहिए. सो ही इज गोना कम एंड

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तालियां ही तालियां मुझे सुनाई दे रही है और मैसेजेस आने लगे हैं, कहते हैं कौन है तो अभी मैं उनको बताऊंगा आप कौन है. क्या हुआ ना, 1976, that was 50 years ago, on 25th of January, a beautiful little boy was born in Jaipur. Yes, oh my God. ये लड़के ने कमाल कर दिया, क्योंकि स्कूल जाता है जैसे हर बच्चा जाता है, लेकिन 8 साल की उम्र में स्टेज पे गाना गाया और कीड़ा घुस गया और कहने लगे नहीं अब तो मैं गाऊंगा ही गाऊंगा और मुझे जाना है, बॉम्बे जाऊंगा. और वहां पे जाके 1960s में हुआ, तो ये बात जो हुई थी उनके मामा जी उस्ताद मोहम्मद हुसैन और उस्ताद अहमद हुसैन. वाह वाह वाह वाह, मैं कान पकड़ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे मौसीकी इन्होंने तालीम दी और वहाँ से इनकी शुरुआत हुई. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सॉन्ग ही सैंग वॉज फ्रॉम वीर ज़ारा एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद वकील. मोहम्मद वकील जी, आपका यहाँ पे स्वागत है लाइका गोल्ड में. आप आए, बाहर आई.
1: सर, लाइका गोल्ड के जितने लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब. और मेरे लिए बहुत ही खुशी की बड़ी बात है कि आप इतने लाजवाब फनकार हैं, बाली ब्रह्मभट्ट साहब, उनके सामने उनके साथ बात करने का मौका मिला. और मैं लाइका गोल्ड के जितने मेंबर्स हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, और हमारे अनूप भाई का.
0: यस यस, अनूप जी इनके प्यारे दोस्त, एंड मुझे लगा कि SBI का रेट वो देंगे हमें, लेकिन उन्होंने ऐसे मस्ती से हाथ मार दिया. पर बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए, दोस्त यहाँ पे आए हो. एंड आप मुझे बताइएगा, ये वीर ज़ारा का गाना कैसे नसीब हुआ?
1: देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि एक संगीत परिवार में पैदा हुआ
0: जी.
1: और उसके अलावा संगीत परिवार में पैदा होने के साथ साथ एक आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको अपने परिवार को, अपनी विरासत को
0: जी,
1: अपने खानदान को आगे लेके चलना है
0: जी.
1: तो बचपन से गा रहा हूँ, और ये संगीत ऐसा सब्जेक्ट है आपको मालूम है कभी ख़त्म नहीं होता, आज भी रियाज करता हूँ. तो मुझे याद है कि जब वीर ज़ारा फिल्म बनने वाली थी, तो जो आदरणीय मदन मोहन साहब के बेटे संजीव कोहली साहब का मेरे पास फ़ोन आया कि हम चाहते हैं कि वो जो कव्वाली है वीर ज़ारा की शाहरुख खान साहब, वो आपके दोनों उस्ताद जी और आप गाएं, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब. और बाली जी, बहुत बड़ी बात ये थी कि यश चोपड़ा साहब के बंगलों पर हम लोगों की ये सिटिंग हुआ करती थी, और यश चोपड़ा साहब ने एक बार भी जाहिर नहीं किया कि वो इतने बड़े आदमी हैं. और जब हमने गाया तो वो कुछ अलग फीलिंग थी. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप थोड़ा सा, उन्होंने मेरा सीन सुन लीजिए, फिल्म का सीन क्या है.
0: अच्छा,
1: वो सीन समझाया तो समझ में आ गया गाना कैसे है. ये फीलिंग अलग है.
0: ओके.
1: तो जब रिकॉर्डिंग हुई तो मुझे एक वाक्य बड़ा अच्छा याद है वीर ज़ारा की रिकॉर्डिंग का, कि जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो संजीव कोहली साहब ने फोन किया, यश जी आप आ जाइए, रिकॉर्डिंग हो चुकी है. संजीव साहब ने फोन किया तो यश चोपड़ा साहब अराउंड 3:30 दोपहर में आए थे. तो एक बॉस का क्या काम होता है कि ऑर्डर देना, लेकिन नहीं, संजीव कोहली साहब से यश चोपड़ा साहब कहते हैं, संजीव मुझे बहुत भूख लगी है, खाने को मिल सकता है? अच्छा। आप सोचिए क्या डाउन टू अर्थ. तो वो जो बड़ी बात शाहरुख खान साहब के लिए गाया हमने. हाँ। जावेद अख्तर साहब ने इसको लिखा है.
0: हाँ जी.
1: और मदन मोहन साहब की कम्पोजिशन.
0: माशाल्लाह,
1: बहुत बड़ी बात है.
0: माशाल्लाह.
1: और जब जब हर महफिल में गाता हूँ मजा आता है, और आज आपके सामने इसकी शुरुआत की
0: जी,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा सर.
0: हमें भी इतना अच्छा लग रहा है. मैं कितने सालों से आपको सुनता आया हूँ, यू नो, क्योंकि आपकी एक एल्बम 1998 में सपने आई थिंक निकली थी.
1: यस राइट सर.
0: और मैंने सोचा कि ये नई आवाज आई इंडस्ट्री के अंदर. फिर उसके बाद आपका एल्बम हुआ गुजारिश
1: जी.
0: तो उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे बताइए.
1: देखिए, मैंने ऊपर वाले की मेहरबानी है
0: जी,
1: जो सारेगामा मैंने विन किया 1998 में.
0: वो सोनू निगम ने लॉन्च किया था ना गुजारिश.
1: सोनू निगम साहब ने.
0: हाँ, न्यूज में बहुत बड़ी बात थी.
1: और ये जो सोनू निगम साहब ने जैसा सारेगामा को होस्ट किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकता. वो लेजेंड है, उनके जैसा फनकार बहुत कम आता.
0: करेक्ट.
1: तो सारेगामा में पहले मैंने विन किया.
0: हाँ।
1: मेगा फाइनल, फिर मेगा फाइनल.
0: अच्छा.
1: और मेरे जो हमारे सुनने वाले हैं लाइका गोल्ड के, उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो जो सारेगामा की पैनल थी जजेस की.
0: हाँ।
1: वो अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिकल वो था प्रोग्राम वो, क्योंकि उसमें नौशाद साहब, खयाम साहब, ओबी नैयर जी, अनिल बिस्वास जी, कल्याण जी, आनंद जी भाई, जगजीत सिंह साहब, पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, परवीन जी, ये सब जज थे.
0: आज भी यूट्यूब पे वो है वीडियो.
1: तो वो मेरे चैनल
0: पता चलता है कि कितना टफ था,
1: तो वो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था जिससे मुझे पूरी दुनिया ने पहचाना
0: जी।
1: उसके बाद सारेगामा के बाद सपना एल्बम आया 1998 में, उसके बाद फॉरन मैग्नेट साउंड एक म्यूजिक कंपनी थी, उसने मेरे दो सोलो एल्बम निकाले कसक के नाम से।
0: हाँ।
1: जो उसकी एक लाइन थी, ये कसक दिल की दिल में चुभी रह गई।

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: ये एल्बम आया था, उसके बाद काफी एल्बम आए, गुजारिश का अपना नाम वो भी आया था।
0: हाँ जी,
1: मेरे कम से कम 20 से ज्यादा एल्बम्स आ चुके हैं। और उसके अलावा मेरी मम्मी का बड़ा आशीर्वाद है कि मैं इन दिनों बहुत कुछ अच्छे और बड़े बड़े काम मुझे करने मिले हैं।
0: हाँ जी,
1: एक फिल्म आई थी सफर में शहर, उसका टाइटल ट्रैक गाया मैंने।
0: शाबाश,
1: भगवान शिव जी के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है, उसका मैंने एक सॉन्ग गाया, भजन गाया है। और जावेद साहब के साथ एक बहुत बड़ी सीरीज गुनगुना लो करके एक एप्लीकेशन आई है, म्यूजिक एप्लीकेशन।
0: अच्छा,
1: GOGONALO गुनगुना लो,
0: गुनगुना।
1: और जितने भी लोग संगीत को प्यार करते हैं वो उनके लिए एक वरदान है, और मैं दुआ करता हूँ और मेरी उम्मीद है कि लाइका के साथ गुनगुना लो हम लोग साथ में कुछ अच्छा करने वाले।
0: आप इतने रियाजी हो, दिन में कितनी बार रियाज करते हो?
1: देखिए, एक शेर है कि कुछ वो होते हैं जो माहौल में ढल जाते हैं, कुछ वो होते हैं जो माहौल बदल देते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि म्यूजिक और रियाज का जो एक ताल्लुक है वो ये है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं
0: जी,
1: सांस लेते हैं,
0: हाँ जी,
1: उसी तरह संगीत है।
0: हाँ।
1: तो संगीत के लिए है कि आपका माहौल बना रहना चाहिए, आपका हारमोनियम, आपका तानपुरा बजते रहना चाहिए।
0: जी जी।
1: वो माहौल से आपको रियाज करने के लिए और मजा आता है। तो मैं जितना हो सके रियाज करता हूँ।
0: अच्छा।
1: अपने गले को, अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मगर अभी मैं संगीत से एक स्टूडेंट हूँ, कोशिश कर रहा हूँ।
0: वाह, तो सुबह कितने बजे उठते हैं रियाज करने के लिए?
1: देखिए, जो बात सच हो वही बतानी चाहिए।
0: हाँ।
1: वो नहीं कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, नहीं, मैं जब कभी भी उठता हूँ,
0: जब उठे तब सवेरे।
1: हाँ, जब उठने के बाद, जब भी डिपेंड, शो है, रिकॉर्डिंग है,
0: समझ गए।
1: लेकिन सुबह आने होने के बाद मेरा तानपुरा ऑन रहता है, जहाँ से मेरा गला चलता रहे।
0: वाह,
1: और मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी अच्छी जगह पैदा हुआ। मेरे जो उस्ताद हैं, उस्ताद अहमद हुसैन साहब पद्मश्री हैं, और मेरे मामा हैं और मेरे गुरु हैं
0: जी,
1: उन लोगों ने मुझे आज जो कुछ भी है ऊपर वाले क्रम की बात, उनकी मेहरबानी है, और मेरी मम्मी का आशीर्वाद है। और वो एक शेर में हर महफिल पढ़ता हूँ, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है।
0: यस,
1: उनका आशीर्वाद है।
0: बहुत खूब। और यू नो, आपका जो अंदाज है ना, यू गॉट अ वेरी यूनिक मैनर ऑफ सिंगिंग गजल्स, ये कहाँ से आपने पाया?
1: देखिए,
0: बहुत यूनिक है।
1: थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद इतने बड़े कलाकार हैं,
0: अंदाज बहुत यूनिक है।
1: सर देखिए, मेरे जो नाना जी थे उस्ताद अफजल हुसैन जयपुर वाले,
0: हाँ।
1: दादाजी उस्ताद मोहम्मद इस्माइल साहब
0: जी,
1: उन लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि आज भी उनके नाम की और काम की खुशबू पूरी दुनिया में है, और लोग उनका नाम लेते हैं कान पकड़कर। तो हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि कोई भी काम करो तो उसमें या तो रियाज करो तो गाना,
0: हाँ।
1: रियाज ना करो तो गा ना। तो मतलब ये है कि गज़ल मैंने ज़्यादा, मैं सब चीज़ें गाता हूँ, लेकिन गज़ल मेरे दिल के करीब है, बिकॉज मुझे शायरी का भी शौक, शायरी करने का नहीं, शायरी अच्छी सुनने का।
0: हाँ जी।
1: तो शायरी और म्यूजिक दोनों चीजें एक जगह होती है तो गजल बन जाती है।
0: Absolutely.
1: तो वो यूनिक आवाज का ये है कि जब आप रियाज करते हैं और एक खोज होती है, तलाश होती है आपको संगीत की
0: जी,
1: कि मुझे मेरे संगीत से प्यार करना है, जिस तरह अपनी वाइफ से, बीवी बच्चों से, बहन से, रिश्तेदारों से प्यार होता है, दोस्त से प्यार होता है,
0: yes.
1: उसी तरह संगीत से भी प्यार होना चाहिए।
0: Absolutely.
1: तो वो आप संगीत के आस पास आ सकते हो।
0: बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और यू नो, दी वे यू सिंग विद इमेंस पावर एंड मेलोडी एंड सूदिंग क्वालिटी जो होती है वो आपकी आवाज में, सूदिंग क्वालिटी जो होती है ना, वो जैसे कि मैं बताऊं, आपका मेरे को लगता है कोविड के टाइम पे आपने उदित नारायण जी के साथ एक गीत गाया था, वो कौन सा था?
1: उदित नारायण जी के साथ आस भरो, एक नहीं, एक दूसरा था वो।
0: हाँ,

0: जीतेंगे, तो वो एक अवेयरनेस के लिए गाना था कोविड का, हाँ, उदित नारायण जी के साथ गाया।
1: जी जी,
0: तो बहुत बड़ी बात,
1: मुझे याद है ये। और राग से बने धुन
0: जी,
1: आप थोड़ा इलेबोरेट कीजिए इस पे।
0: देखिए राग जो होता है
1: जी,
0: वो वैसा ही काम कर, 10 थाट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 10 थाट हैं
1: जी,
0: 12 सुर होते हैं। ये कहावत में एक सिर्फ 7 सुर हैं, 7 आसमान हैं, 7 रंग हैं, नहीं, लेकिन 12 सुर होते हैं, 10 थाट 12 सुर और 22 श्रुतियां होती हैं।
1: हाँ जी।
0: तो उनमें से राग पे जब हम काम करते हैं तो उस दिन हम सोचते हैं कि ये वर्ड्स हमारे पास हैं, हम इस राग को चुनते हैं ये वर्ड को कंपोज करने के लिए।
1: हाँ जी।
0: तो राग से धुन बनती है।
1: हाँ जी।
0: धुन से राग नहीं बनता, धुन बना ले फिर बाद में समझ में आई क्या, लेकिन राग से धुन बनती,
1: राग से धुन बनती है, जो नौशाद साहब बहुत अच्छी तरह समझाते थे हमें। उन्होंने शुरुआत ही की थी काफी राग आधारित गानों को बनाने की।
0: जो एक कंपोजिशन
1: कोहिनूर, वैसे
0: एक कंपोजिशन जो है जिसको रफी साहब लता जी ने गाया है,
1: इरशाद,
0: एक शहर

0: बात, वाह वाह वाह वाह वाह वाह। वकील जी मैं क्या आपको बोलूं कि इरादा ऐसा है कि मैं दो घंटे नेक्स्ट मेरे आपकी आपके साथ ही बात करता रहूं इन बातों के साथ, बिकॉज संगीत मेरी लाइफ है जी। और मुझे ऐसा इंसान मिल जाए तो मैं तो छोड़ू ना, लेकिन हम यहाँ पे बरतरफ करेंगे भाई, बिकॉज हमें एक पॉडकास्ट करना है आपके साथ
1: जी। जरूर।
0: तो पॉडकास्ट के अंदर दिल खोल के हम और बातें करेंगे, और आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, और जो सीख रहे हैं सिंगर बनने के लिए उनको क्या एडवाइस देंगे आप?
1: देखिए, ऑडियंस को मैं कहना चाहूँगा कि एक कलाकार का जो वजूद है, पहचान है उसकी, वो ऑडियंस है। तो आप जिस तरह से मुझे, आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मुझे याद है सारे का मगर जब कॉन्टेस्ट चल रहा था
0: जी,
1: तो कई लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कई लोगों ने नमाज पढ़ी, कई लोगों ने मेरी दुआ की। तो आप अपनी दुआ आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखिएगा।
0: यस।
1: और लाइका गोल्ड इतना बड़ा ये मंच है, यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लाइका गोल्ड को प्यार करते हैं और करते रहिएगा,
0: वाली
1: ब्रह्मंड साहब को
0: शुक्रिया।
1: और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि संगीत का बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं है।
0: हाँ जी।
1: किसी भी फील्ड का नहीं है, लेकिन संगीत का तो बिल्कुल भी नहीं है।
0: हाँ जी।
1: आप अपने उस्ताद से ईमानदारी से सीखें।
0: हाँ जी।
1: और ऐसा नहीं कि चार दिन सीख के खुद उस्ताद बन जाए,
0: ये भी बात है।
1: उस्ताद से ईमानदारी सीखें।
0: हाँ जी।
1: और ये काम ऐसा है कि रियाज करो तो राज करो
0: जी,
1: इसलिए रियाज करना जरूरी है।
0: हाँ
1: और रियाज से ही मंजिल मिलती है।
0: वाह वाह, आपकी बातें इतनी प्यारी है, आपका स्वभाव भी इतना प्यारा है, और इंसान भी बड़े प्यारे हो। ऑनेस्टली इट्स सच अ प्लेजर टू मीट यू। जिनको मैं सुनता आया, आज मेरा सपना, पहला एल्बम आपका सपने, और हमारे सपने साकार हुए।
1: आपका बड़ा पसंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया जनाब।
1: शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। वी आर टॉकिंग टू नन अदर देन मोहम्मद वकील, एंड ऑल आई कैन से इज अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मैन। ओके, हियर वी गो विद a big round of applause. There you go. Thank you, sir. And मैं इतना ही कहूँगा कि podcast में हम दिल खोल के और बातें करेंगे। So audience को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, look forward to the podcast with Mohammed Wakeel. शुक्रिया।
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-393-5757. Greens by Danube. Prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Leicester, the biggest celebration of the year is here.
6: 50 Fest at Root Millers, powered by Kalyan Jewelers,
5: Kavya Silks,
6: Rafiq Catering
5: and Jungle Club,
6: Glozo,
5: Mars, Dreams
6: and Neslo Estate Agents.
5: Join the fun with games, dancing and live anchoring, and walk away with amazing prizes. Spend £50 for 1 kg of ghee or £200 for 15 snacks of sugar.
6: Plus 2,000 more Root Packs hidden vouchers. All our customers are winners. With £50,000 in prizes to be won, this is one event you can't miss. Root Millers on Melton Road, Leicester.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
8: Atif Aslam live in the UK.
9: Oh, Julilal Kalandar, must, must, must.
10: To the O2 London on Sunday the 14th of June.
8: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
12: Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
11: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 saal ka bharosa, har saal hazaron happy travelers. Isliye families ke liye Star Tours experience alag hota hai. Visit startours.co.uk.
0: This song is dedicated to none other than Mohammad Vakil. इन्होंने दो लाइन सुना दी, हम रफी साहब को यहाँ ले आए आपके समक्ष. लता जी और रफी साहब फिल्म लीडर में एक शहनशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल.

0: मैंने।
1: मोहम्मद वकील साहब ने मेरे तार छेड़ दिए, तो ये देखो गाना हो गया।
2: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
3: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
2: Seven stations. One podcast. One mobile app. This is the Leica Radio Network.

क्या बताऊं, गाने इतने खूबसूरत, आवाज भी ऐसी खूबसूरत, और इंसान डाउन टू अर्थ, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बोर्न इन सावरकुंडला. सावरकुंडला इज अ प्लेस इन द बरोडा स्टेट विच इज नाउ नोन एज वडोदरा. अ सिंगर हु एक्चुअली डिड हिज ग्रेजुएशन, उन्होंने ग्रेजुएशन जब पूरी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गुजरात में, तो इनके तीन भाई, सबसे बड़े भाई मनहर उदास और उनसे छोटे भाई पंकज उदास जी, अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे ऑन 26th February 2024, एंड निर्मल उदास, ऑल थ्री सिंगर्स. And he completed, like I said, a mechanical engineering training in Gujarat. And then, late 60s mein Mumbai aaye. Wo nagri jo sabko kaam dilati hai, life bana deti hai. Lekin mehnat karni padti hai iske liye. So he found an entry into the industry through his brother-in-law. Unke brother-in-law jo the, wo ek filmmaker the. Wo filmmaker ne unko introduce kiya Kalyanji Anandji ke saath. Aur Kalyanji Anandji ne उनको बुलाया और कहा कि जहां भी मौका मिलेगा हम आपको थोड़ा थोड़ा गवाते रहेंगे. सो ही यूज टू गो एंड बी विद देम, एंड कभी कभी एक दो लाइन इधर उधर गानी पड़ी तो गा देते थे, कोरस भी कर देते थे. ऐसे करते करते एक दोस्ती बन गई थी. और मुकेश जी एक जमाने में अवेलेबल नहीं थे गाने के लिए, आई थिंक ही वॉज टूरिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम. तो इन्होंने कहा एक गाना है फिल्म विश्वास का, 1969 की फिल्म, उसमें एक गाना जो था वो इन्होंने बोला कि तुम उनके लिए गा दो अभी, वी जस्ट कीप अ डमी वॉइस एंड मुकेश जी आ जाएंगे तो रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा. ये बोलकर इन्होंने गवा दिया. मुकेश जी जब आए वापस और उन्होंने गाना सुना, उन्होंने कहा कि ये लड़के ने तो इतना खूबसूरत गाया, गीत गाया है और आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, वैसे ही रखिएगा. And that was the turning point of his career. Yes, उसके बाद he went on singing and हमने जितने भी गाने सुने हैं 300+ films के लिए इन्होंने गाने गाए हैं, गुजराती, हिंदी, पंजाबी, बंगाली. I'm looking forward to hearing a Punjabi song sung by Manhar Udas. पर इन्होंने कहा कि किया तो है,

0: मुझे, मैंने बंगाली गाना सुना है, गुजराती भी सुना है, हिंदी भी सुना, लेकिन पंजाबी मैं ढूंढूंगा। एंड इन्होंने गजल्स काफ़ी गाई और 30 एल्बम, एंड द लास्ट वन आई थिंक इट वॉज लॉन्च्ड इन ऑस्ट्रेलिया नवंबर 2013 में, एक एल्बम था आशीर्वाद, वो रिलीज हुआ नवंबर 2013 में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। एंड देन 31वां एल्बम, 30 एल्बम इन्होंने किए हुए, 31वां एल्बम वो था अलंकार, वॉज रिलीज इन वर्ड फेस्ट वडोदरा का शॉर्ट फॉर्म वर्ड VAD, एंड वैड फेस्ट बोलू तो भी चलेगा, 18 जनवरी 2015 में वो 31st एल्बम अलंकार वॉज रिलीज एट वडोदरा। एंड देन लेटेस्ट एल्बम 5 मई को 2018, दिस वॉज 8 ईयर्स अगो, आकर्षण, एंड दैट वॉज रिलीज इन आनंद इन गुजरात। एंड ही ऑल्सो सेंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड कागज की नाव, विच वॉज 1978 की फिल्म, में तो बहुत सारी की, हीरो, यू नो इट, हीरो फिल्म। और एक कहानी है, फिल्म कौन सी थी, अभिमान, उसकी एक कहानी है उसके पीछे, वो मैं आगे जाते हुए आपको कहूँगा कहानी, क्यों इन्होंने एक गाना गाया जब किशोर दा ने रिफ्यूज कर दिया था गाने का उस फिल्म के लिए। तो सुनते रहिएगा
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling can get you, let us see how many Indian rupees you can get, 128.9. And remember to make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambat. Bali Brambat. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.

0: Remembering Manharu Das with his first song debut.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: And ek kahani mujhe aapse kehni thi. Because what happens here is कभी कभी फिल्म बनती है और पॉपुलर सिंगर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है गाने के लिए लेकिन कभी कभी सिंगर्स नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या था एक फिल्म बन रही थी एंड दैट वॉज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी अभिमान और इसकी जो स्टोरी थी वो भी ऋषिकेश मुखर्जी ने ही लिखी थी तो उन्होंने अभिमान फिल्म में दो गाने किशोर दा से गवाए और दो गानों के बाद किशोर दा को महसूस हुआ स्टोरी वाइज उनको लगा कि ये कहानी उनकी लाइफ पे लिखी गई है यानी कि किशोर कुमार एंड एवरीबडी नोज हिज फर्स्ट वाइफ दैट इज द मदर ऑफ अमित कुमार दैट्स रुमा गोहा ठाकुरता सो रुमा गोहा ठाकुरता के साथ इन्होंने पहली शादी जो की थी उसके बाद ऑब्वियसली दे गॉट सेपरेटेड एंड ऑल दैट तो किशोर दा को लगा कि ये कहानी उनके ऊपर लिखी गई है और रुमा ठाकुरता के ऊपर सो इन्होंने मना कर दिया इन्होंने कहा कि मैं नहीं गाऊंगा इस फिल्म के लिए एनी मोर सो उसके लिए फिर मनहर उदास जी को बुलाया गया And other singers, they came forward and they sang the songs of film Abhiman, jisme sangeet to of course S.D. Barman ka tha and Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan and Bindu and Asrani, ye sab star cast thi and songs were all penned by none other than Majroo Sultanpuri. एंड देन किशोर दा ने जो गाया था तेरे मेरे मिलन की ये रहना वो गाना गाया उन्होंने फिर मीत ना मिला रे तो वो भी गाना इन्होंने गा दिया लेकिन जब मना कर दिया तो ऑब्वियसली लता जी ने इनके लिए जया बच्चन के लिए सब गाने गाए थे मनहर उदास जी को बुलाया गया और रफ़ी साहब ने गाना गाया था तेरी बिंदिया रे वो गाना तो ये गाना सुनिएगा जो मनहर उदास ने गाया जो किशोर दा को गाना चाहिए था
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स
0: गीत के बोल हैं लुटे कोई मन का नगर लता मंगेशकर एंड मनहर उदास वी आर सेलिब्रेटिंग मनहर उदास जी की 83rd बर्थडे अभिमान फिल्म 1973

लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी। पंजाबी बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉनस्टॉप।

0: ठीक नहीं।
1: राज पैटर्न, ये है
2: लाइका रेडियो।
3: लाइका रेडियो,
1: ट्रैफिक एंड ट्रैवल।
4: I'm Samantha Dean. In Coventry, the A429 Kenilworth Road's blocked, queuing traffic due to a fallen tree from Earlsdon Avenue South to the Firs. Hall Green, the B4146 Swanhurst Lane's blocked, slow traffic due to a fallen tree from Wake Green Road to Meadowview. Handsworth Wood, the A34 Birchville Road's partially blocked, queuing traffic due to an accident at Trinity Road. Hales Owen, the A458 Stourbridge Road's queuing at Alexandra Road in the roadworks. Shelfield, the A461 Litchfield Road's queuing at Spring Road. That's again through the roadworks area. That's the latest.
1: This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favourite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
1: Drive is sponsored by Pepe's. Download the Pepe's app for exclusive deals and tasty offers. Plus, enjoy easy ordering whether you're in store or relaxing at home.
5: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LVS सिर्फ $24.99।
5: हमजा समोसास 3 for $10।
6: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
5: सुहाना मसालास 2 for $150। रामदेव नमकीन 2 for $149।
6: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
5: केसर मैंगो पल 149। फूल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54 UN.
5: While stocks last.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: ZTV HD पर देखिए तुम से तुम तक।
10: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
9: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
10: आर्यभट्ट, अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
11: मैं ही राजीव भाटिया।
9: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app.
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
13: Relax, I've booked the Uber already.
12: But how? My roaming isn't even working yet.
13: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
13: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
15: T's and C's apply.
16: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
15: Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
0: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहां हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
17: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
18: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
1: 90s throwback plays now.
3: Like a radio.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर। जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
1: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
2: खुद से भी ज्यादा।
0: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
2: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
0: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
3: Leica Radio, finalist at the Radio Academy ARIA's 2026.

0: रहे थी बेबी डॉल, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता. Let's squeeze in one last big check. We need to see what's happening around the globe.
1: Get right with Radio Wally's roller coaster, only on Laika Radio.
0: चलो मिलते हैं न्यूज के बाद.

0: to get naughty and nostalgic as Radio Wally takes you through the noughties.
1: Laika Radio.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner Laika Radio.
8: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ.
9: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल.
8: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन.
10: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-180. And let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
0: This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. Laika Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and Leicestershire, with the UK's biggest Asian hits.
1: Laika Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: को सफरात फतेह अली खान जी हाँ, धड़क धड़क जाए और घड़ी की कांटी भी धक धक करके आगे बढ़ती है, तो चलो लेट्स स्क्वीज इन वन लास्ट बिग ट्रैक।
1: रेडियो वाली गेट्स नॉस्टैल्जिकली नॉसी ओनली ऑन लाइका रेडियो।
0: एज़ वी पिक अप द पेस विद दिस वन, मिलते हैं न्यूज़ के बाद फॉर द लेजी लाउंज।

0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02030773633 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, event in Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
3: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
4: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
5: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
4: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
5: Or sales at leicamedia.co.uk.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
8: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
9: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
7: अरे कहाँ हो तुम?
8: हो आलो आलो।
10: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
4: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsa Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
11: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
12: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk.
13: The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.